World Inco Festivity Offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps Internet और Net TV साथ में Dual Band Router, Nokia Beacon 1.1 Mesh Router और Net TV Set Top Box मात्र रूप 12 से प्रति महीना में सर्थ हरू लागू होने चाहिए। छिटो बने गई World Inco।

0: World Inco festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set up box मात्र रु 1200 प्रति महीना में सर्तहरु लागू होने चाहिए. छिटो बने गई World Link.
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज.

0: DFM 94.2 समुदाय को आवाज।
1: ए बहिनी, घर त चिटिक्कै बनाएछौ हैन? यति राम्रो फर्निचर को सामान कहाँबाट ल्यायौ?
2: कहाँबाट ल्याउनु नि दाई, हाम्रै व्यासचार किसान हार्डवेयर को पछाडी पट्टी रहेको आरती काष्ठ उद्योगबाट ल्याएकी नि।
1: हजुर, हामी कहाँ स्टील को दराज, कुर्सी, टेबल, साथै काठ को सोफा, दराज, पलांग, पर्दा, कार्पेट, विवाह को सामान होलसेल तथा खुद्रा मूल्य में बिक्री गरिन्छ। आरती काष्ठ उद्योग,
2: ब्यास 4 मेन रोड, दमौली तनहुँ।
1: प्रोप्राइटर विष्णु कुमार श्रेष्ठ। फोन 98 16 16 13 26, 98 4 63 056 05, 98 19 11 36 27, 65 65 0

0: इनरोड दमौली
1: फर्नीचर उद्योग
2: ब्यास 11 मुसे खोला 10 भाई नया पुल
0: मोबाइल नंबर 9816466683
3: 9560343434
4: दमौली FM 94.2 समुदाय को आवाज।

0: निर्मल बाल मंदिर पराशर दमौली कलेज लगायत का कलेज ड्रेस उपलब्ध छ।
1: प्रोपाइटर सिटीबिटी बाट टेलरिंग मा ग्रेजुएट गर्नु भएका रमेश सेवा परियार।
0: स्थान व्यास नगरपालिका को भवन को पार्किंग साइड।
1: फोन नंबर 9828280 9151045।